तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कोई ऐसा भी मेरे पास तो है, अरे जिसको मेरी तन्हाई का एहसास तो है।

0: तो देख ले तो
1: जल्दी रहे।
0: अरे तो चल ले तो,
1: खुली सड़क है बाबा।
0: तो क्या हुआ भाई?
1: हाँ तो हट जाए
0: हो जाए।

0: 31 minutes past the hour of 6 and you're tuning to East FM, Kenya's premier Asian mix. This is The Rush with Vishal. And, you know, earlier I spoke about Kiki and one of the most versatile singers. And aajkal reality shows bahut ho rahe hain that we all know and we watch. Main aksar nahi dekhta, but I know a lot of people who watch reality shows. Jaise Big Boss ho gaya, jaise... You know, this India's best dancer, yeah, koi singing competition, Indian Idol ho gaya, aise. So, you know, I have a question aapke liye and I want your opinion on this. Theek hai, aap mujhe message karo on 0701-106-106. So, simple si cheez hai, reality shows to hote hai. Do you think, aaj hum baaki shows ke baare mein baat nahi karenge, but we'll talk about the singing shows. Aajkal ye word jo hai, auto-tune. बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गया है एंड वी गॉट अ लॉट ऑफ सिंगर्स एज वेल दैट यूज दिस फीचर दैट इज़ व्हाट आई विल से सो अगर उस ज़माने में 60s 70s में व्हेन वी हैड किशोर कुमार एंड रफ़ी साहब वी हैड लेजेंडरी सिंगर्स एंड देन वी हैड जब ज़माना बदला 90s में लेट 80s एंड 90s में वी हैड उदित नारायण एंड कुमार सानू देन वी हैड सोनू निगम एंड शान इन द अर्ली 2000s सो ये सिंगर्स में वो ज़माने में जो टेक्नोलॉजी थी इतनी एडवांस नहीं थी एंड वो I have seen videos that you know on the aajkal online sab kuch mil jata hai YouTube mein when we have got kya kehte hain ek pura orchestra baj raha tha and the legendary late Lata Mangeshkar she actually was singing and recording a song and we had the whole orchestra that was playing over there while she was singing aise song record hote the aajkal technology mein we've got auto tune so aapko kya lagta hai who is the best singer in the current generation we've got obviously bahut sare singers hain aajkal we've got Jubin Nautiyal Arijit Singh we've got Vishal Dadlani and a few others विशाल मिश्रा इज़ ऑल्सो देयर ये विशाल नाम एक्चुअली काफ़ी कॉमन हो गया नहीं सो बहुत सारे आजकल सिंगर्स हैं सो अगर ऑटो ट्यून नहीं होता अगर वो ऑटो ट्यून नहीं यूज़ कर रहे आई डोंट नो इफ दे आर डूइंग इट और नॉट बट आज का टाइम का फेवरेट सिंगर आपका कौन सा है विदाउट ऑटो ट्यून ये याद रखना और एक और चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ मैंने स्मृति मंदना द क्रिकेटर स्मृति मंदना द क्रिकेटर शी एक्चुअली वॉज ऑन कौन बनेगा करोड़पति सम अ फ्यू मंथ्स और अगो एंड मेरे को एक वीडियो कल आई वॉज जस्ट स्क्रॉलिंग थ्रू एंड आई सो अ वीडियो एंड शी एक्चुअली मैंशनड अ सिंगर आई विल टेल यू अबाउट दैट शॉर्टली
1: East FM, Kenya's premier Asian mix. These top jobs are waiting for you on myjobsinkenya.com.
2: Our client in the refinery industry is seeking to recruit a process plant or machine operator, a degree or diploma in any technical field related to production, 2 to 3 years previous leadership experience in plant or machine operation position in the FMCG is required. Visit myjobsinkenya.com to apply.
1: Your dream job today. Log on to myjobsinkenya.com. Kenya's most effective jobs website. My Jobs in Kenya is a free service and does not charge applicants for registration, applications, or interviews.

तू जो मिला टेकन ऑफ द मूवी बजरंगी भाईजान प्लेइंग फॉर ईस्ट एफएम किन इस प्रीमियर में दिस इज द रश विद विशाल एंड टाइम फॉर राइट नाउ. मैंने आपको पहले बताया दैट इट्स वन वर्ड ओनली, ट्रू और फॉल्स. Already I've got Jayshree who has already given me the correct answer, fastest finger first. And questions ye the, Kareena Kapoor played Poo in Kabhi Khushi Kabhi Gham, Ranbir and Alia have starred together in Brahmastra, and Zindagi Na Milegi Dobara is about a road trip.